0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Chandni

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.

टेन मैन की यहाँ कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

भाग मिल्का भाग मूवी से जावेद बशीर साहब और श्रेया घोषाल की खूबसूरत आवाज में और अंग्रेज और अ ब्यूटीफुल ट्रैक टू स्टार्ट योर डे विद। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम। दिनिशा गेजी आपके सात बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान। सितंबर 20th संडे का दिन, नए हफ्ते की शुरुआत फुल जोश के साथ।

0: जैस्मिन सैंडलेस की आवाज में ब्रांड न्यू ट्रैक प्यार, और इसका वीडियो देखोगे ना इतना विम्सिकल और ड्रीमी सा है, बहुत सुंदर। आप जैसे कोई मूवी से, जब तू सजन मोहित चौहान मजिशियन भाई साहब। ये गाना मैं आपको प्रेस्क्राइब कर रही हूँ, हर रोज आईने में देख के खुद खिलेगा दिया करो, ठीक है।
1: सीनी सीनी जब ती रातों में जलता हूँ मैं बरसातों में, डूबा डूबा हर पल यादों में, दिल क्या करे,
0: दिल क्या करे, इस सच अ ट्रबलसम क्वेश्चन की इसका जवाब ढूंढते ढूंढते जिंदगियां गुजरी है ना। वेल, ये सारे अमेजिंग गाने लाइन अप है आपके लिए इस घंटे में, और ढेर सारी बातें करनी है। मेरी आवाज से आपको पता चल ही गया होगा कि क्या हुआ है मेरे वीकेंड का हाल, बताऊंगी कुछ देर में आकर। तब तक आप मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर, बताइए आपका वीकेंड कैसा रहा, और एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेज दो यार। सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: In school season, har din ko fuel kare delicious or nutritious Maserati fresh products ke saath.
2: Milk, cheese, yogurt, lemonade, eggs!
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस.
4: This is Amira Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबुहमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: मोहित चौहान की आवाज में बेहद खूबसूरत गाना जब तू सजन only on Radio Olive 106.3 FM. तनीषा है आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और नाजरी जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, द बेस्ट डेज आर द वंस दैट स्टार्ट विद नोइंग समवन आउट देयर इज रूटिंग फॉर यू. कंसिडर दिस योर डेली रिमाइंडर दैट आई एम every morning. Thank you so much, and for all of you listening to me out there, and Nazni ji, you too, I am rooting for you. Yes. Shashikant Patil ji ka bhi message aaya hai hame, unhone bheja hai, life is like a puzzle, never waste time trying to please people with trying to place people where they don't fit. Exactly. Also, this goes for yourself. Agar aap kahin par misfit feel kar rahe hai, तो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है, इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स विच माइट मेक यू फिट. पर वो थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर आप खुद भी अनॉय हो ही जाओगे कि यार कब तक एडजस्ट करूँ, मैं ही क्यों करूँ. वो वाली सिचुएशन है, उससे पहले निकल लेने का, ठीक है. एंड संतू जी का मैसेज आया है, विशिंग यू अ पीसफुल डे, गुड मॉर्निंग, मे योर डे बी फिल्ड विद पॉजिटिव थॉट्स, काइंड पीपल एंड हैप्पी मोमेंट्स, गुड मॉर्निंग. जुल्फी जी का भी मैसेज है, स्क्रॉल कर रही हूँ यार, रुको. Good morning. Your thoughts are powerful. Make them work for you, not against you. So true. And वो कहते हैं ना कि आप जो सोचते हो आप वही attract कर रहे हो. तो जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे यार. जसा जी का भी गुड मॉर्निंग आ गया जी यहाँ पे. और आप क्या किसका इंतजार कर रहे हो, फोन है ना हाथ में, तो फटाफट से कर दो मैसेज 3311 1063 पर. सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून एंड रियो बिंदास.
1: Awesome.
0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
1: Awesome.

के जयेश गांधी की आवाज में वा लाइफ हो तो ऐसी मूवी से तेरी याद, मेरी याद तो आई होगी आपको वीकेंड में है, मुझे तो बड़ी आई थी। देखो यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, त्रिशा आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। सो आई हैव दिस हैबिट यू नो कि अगर मेरे पास ऐसे नंबर ऑफ थिंग्स है मेरी आज की टू डू लिस्ट में, तो मैं ऑफिस आते ही अपना वो सारा काम खत्म कर लूँ, वेदर इट टेक्स मी 2 hours, 3 hours, हाफ अ डे, बट मेरा फर्स्ट फोकस होगा कि मेरा काम खत्म हो एंड देन उसके बाद मैं चल करूँगी। देन आई एम गोना अनॉय माई कॉलीग्स, यू नो कुछ भी कर रहे हैं इधर उधर, कुछ नया बना लिया, वीडियो बना लिया, वट एवर, पर मुझे पहले रहता है कि काम पहले खत्म हो जाए, वो ना छूट जाए, हम मस्ती करते रहे उसके चक्कर में। एंड इसी वजह से मेरी टीममेट से भी काफ़ी अनबन हो जाती है कि यार पहले काम कर लो ना, बातें बाद में हो जाएंगी। एंड दिस वीकेंड थर्सडे इनफैक्ट आई स्टार्टेड हैविंग दैट ड्राई कफ एंड आई वाज लाइक ब्रो काम खराब होने वाला है, नो नो नो नो नो। एंड जिस तरह से मैं सोचती हूँ ना कि पहले काम खत्म हो जाए और उसके बाद हम चिल कर लेंगे, सेम कोल्ड ने भी सोचा कि भाई अब वेदर चेंज हो रहा है तो आना तो है ही मुझे, तो मैं पहले काम खत्म कर देता हूँ तनीषा के लिए, क्योंकि इसे तो वैसे भी जल्दी होती है, सबसे पहले हो गया है। जी हाँ, पूरा वीकेंड सोई हूँ मैं एंड यू नो मेडिसिन लेकर, और क्रेजी हालत थी। मम्मी की जो याद आ रही थी ना मुझे उस टाइम पर, आई वॉज कॉलिंग माई मॉम एंड आई वॉज लाइक मम्मी बहुत याद आ रही है, उठ के चाय भी खुद ही बनानी पड़ रही है यार। एंड माई मदर शी वॉज ऑल्सो फीलिंग इक्वली बैड, बट दैट हैपन्स राइट जब आप घर से दूर होते हैं और स्पेशली जब आप अकेले रह रहे हो और ऐसा कुछ हो जाए लाइक यू नो हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाए एंड यू नीड सम सपोर्ट, और उस टाइम पर या जब आप बीमार होते हो आप बहुत वल्नरेबल फील करते हो, तो आपको चाहिए ही होता है कि कोई तो आसपास हो ख्याल रखने के लिए, यू नो टू केयर फॉर यू। एंड उस टाइम पर जो घर वालों की याद आती है, स्पेशली मम्मी, क्योंकि मम्मी तो भाई जिस तरह से ध्यान रखती है ना, वो प्यार ही अलग है, वो प्यार कोई नहीं दे सकता है ना। सो या दैट वाज माय वीकेंड, आपका वीकेंड कैसा रहा बताइए मुझे 3311-1063 पर। अदनान सामी की आवाज में दिल क्या करे फ्रॉम द मूवी सलाम इश्क, स्टे ट्यून्ड एंड जय बिंदास।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड मूवी से जाने ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. तनीषा हब के साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. वेदर अभी वो आप डिसाइड कर लो वेदर यू लाइक इट और नॉट, बिकॉज मेट डिपार्टमेंट ने तो कहा है कि ये हफ्ता जो है थोड़ा ह्यूमिड रहने वाला है. अलॉन्ग विद दैट क्योंकि मिस्ट और फॉग फॉर्मेशन भी हो सकता है अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट में, तो विजिबिलिटी हैम्पर होगी, जीरो भी पहुंच सकती है. सो प्लीज़ ड्राइव करते वक्त अपना ख्याल रखें. राइट नाउ द टेम्परेचर इज 31 degrees एंड इट फील्स लाइक 40 degrees. हाईएस्ट जो है वो जा सकता है 39 और लोएस्ट 31 जो कि अभी है ही. और विंड 6 km/h की रफ्तार से चलने वाली है. अपना ख्याल रखिए और क्योंकि अब ट्रांजिशन में है ना वेदर, हम समर से विंटर की ओर बढ़ने लगे हैं, तो ये यू नो वायरल कोल्ड फ्लू ये सब कैच करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है. तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लें और हो सके तो अपने साथ एक मास्क कैरी करके रखिए, बिकॉज आई नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस. सो आई हैव कैरीड अ मास्क विद मी. मैं किसी से भी बात कर रही हूँ या मिल रही हूँ तो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं उन्हें ना दे दूँ ये. दो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को मिलेगा ही, क्योंकि ये वो ट्रांजिशन के टाइम पे होता ही है, बट स्टिल यू नो प्रिवेंशन इज बेटर. सो ख्याल रखिए उस चीज़ का कि आप भी इसके जगड़ में ना आए और ना ही आपके आसपास के लोग, बिकॉज अनोइंग भाई साहब, क्रेजी अनोइंग, स्पेशली द कफ पार्ट बहुत ही ज़्यादा अनोइंग होता है. एंड यू नो बॉडी इतना ड्रेन हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट ऑल द फाइटिंग इट इज डूइंग इंटरनली, इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाता है कि उठने का भी मन नहीं करता है. तो उससे बच के रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसा खाना खाइए जो इस वेदर के लिए प्रॉपर है और साथ में बहुत बहुत बहुत पानी पीजिए, बहुत सारे फ्लूइड्स लीजिए, ठीक है. ख्याल रखिए अपना, आप इम्पोर्टेंट हैं. और सुनते रहे रेडियो ऑल ऑफ 3 बिंदास.

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: सो इस गाने के पीछे ये स्टोरी है कि जब ये गाना आया था ना, सुपर 30 मूवी जब आई थी, आई वॉज इन मॉरिशस एट दैट टाइम. मैं वहाँ पर काम कर रही थी और जब ये गाना आया तो आई वॉज नॉट वेरी कीन. आई लाइक यार स्टूपिड गाना है, कुछ भी जोग्राफी एंड ऑल दैट, कुछ भी वर्ड्स बना देते हैं राइम करने के लिए, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया. बट देन नाउ अभी रिसेंटली जब ये सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली इतना ट्रेंड किया, हर रील में बैक टू बैक, यू नो दैट लाइन, तेरे लिए घर से निकलती हूँ एंड ऑल दैट, वो वाली लाइन जब बैक टू बैक सुनी, देन इट ग्रो ऑन मी. या सो दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया, यू सी. All these amazing tracks are lined up for you in this hour. Lekin filhal waqt ho gaya hai. Lame jams. So aaj ka mera lame jams ka sawal bahut aasan hai. Agar Kangna cricket khelegi aur out ho gayi to use kya kahenge? Agar Kangna cricket khele aur out ho jaye to use kya kahenge? Mere sawal mein hi jawab hai, zara socho. अगर कंगना क्रिकेट खेले और आउट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? 3311 1063 पर मैसेज करके बता दो या फिर कॉल कर दो 4444 1063 पर. एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल आउट जियो बिंदा.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो. नाम या दाम? नाम
2: मनी फॉलोज माय ब्रदर.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Hi, this is Kailash Kher and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Tanisha.
1: Tanisha. मीका सिंह की आवाज में खिलाड़ी 786 से लॉन्ग ड्राइव. वैसे लॉन्ग ड्राइव का मौसम तो आने वाला है जल्दी. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM. तनीषा है आपके साथ. बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. यू नो कोल्ड रखा है, बेयर विद मी. ठीक है. सो मेरा जो सवाल था लियाम जेम्स का, वो ये था कि अगर कंगना क्रिकेट खेले और वो आउट हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे. एंड वी हैव गॉट आंसर्स ओवर हियर. नो डिसअपॉइंटमेंट एट ऑल. सो मुझे मुसरत जी का मैसेज आया है, मुझे रजनी जी का मैसेज आया है, और साथ में आई हैव गॉट मैसेजेस फ्रॉम एफ जे, देन देर इज संजीव जी, देर इज नारायण, देर इज रेंसा, देर इज अदील, किसी के नाम में सिर्फ माई फैमिली लिखा है, देर इज प्रीति, देर इज भूपी एंड अलॉट मोर. और मैं आपको वॉइस नोट सुनाती हूँ करेक्ट आंसर का, इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग यू द आंसर.
2: हाय रेडियो वाले, वेरी गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग.
2: आज जी सुबह सुबह आपने जो क्विज क्वेश्चन किया है
1: जी,
2: ये यस आपके क्वेश्चन में आंसर है. कंगना रन आउट. कंगना रन आउट ऐसे होगा, आई होप.
1: करेक्ट, यही है विनायक जी, शुक्रिया. और ये जो बीच में हंसी आ रही थी ना, दैट वाज द सोल पर्पस, you know, asking this lame question in this morning, कि वो एक मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत हो और आगे भी दिन ऐसा मुस्कुराते हुए निकले. And yes, the correct answer is Kangana Ranaut. So ज़्यादा कष्ट नहीं करना होता यार. मैं कह रही हूँ ना, अगर ये lame है तो ये lame ही है. इसमें दिमाग लगाओगे तो time ही waste है. फिलहाल भेजो जबरदस्त हिट योर वे. स्टे ट्यून ऑन रेडियो बिंदास.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
1: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
0: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha है आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर गाना सुना बातें कुछ रंग कही सी अदनान सामी की आवाज में फ्रॉम द मूवी लाइफ इन अ मेट्रो एंड एज वी नो दैट F1 Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 is coming and it is going to happen from 27th to 29th of November. उसी के लिए F1 Family Friday भी होने वाला है Friday 27th. So it is an exciting opportunity for the entire family to experience that, you know, F1 का जो craze है. So that ये सिर्फ और सिर्फ motorsport fans के लिए ही ना रहे, बल्कि बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे planned होगा. Along with that, the ticket price is 200 for adult और एक adult ticket पर up to 4 children can go under the age of 12 absolutely free. जी, वहाँ पे आपको F1 racing action देखने मिलेगा, fan village, fan zone is there, live entertainment और performance होंगे, food court है with you know local and international options और F1 और local merchandise भी आपको वहाँ पे मिलेगी. तो जो fans हैं उनके लिए तो भाई crazy time होने वाला है. Giant screens है around the circuit, free parking, taxi pickup and drop off zone भी है. So हर चीज का आपके लिए ख्याल रखा गया है. So अपने जो dates हैं उनको खाली रखिए, 27 से लेकर 29 तक बहुत सारा फन होने वाला है, बहुत सारी क्रेजीनेस होने वाली है बिकॉज फॉर्मूला 1 कतार एयरवेज कतार ग्रैंड प्री 2026 इज अ बैक बेबी. सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे, स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Ready? To learn,
2: yes.
1: To play,
2: absolutely.
1: To grow,
2: with Maserati.
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ कतर ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
5: Malabar Golden Diamonds Bindas Morning.
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: legends and we out.
1: Tanisha.
2: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal rahe yahan par. And Qatar Boat Show 2026 ki tickets jo hai, wo live ho chuki hai. It's on sale now. So, फटाफट से जाके book कर लो इससे पहले कि हाथ से निकल जाए. ठीक है, 4 से लेकर 7 नवंबर तक ये होने वाला है ओल्ड दोहा पोर्ट पे. एंड वी नो कि भाई क्रेजी लग्जूरियस यॉट्स हमें वहाँ देखने को मिलती है, बोट्स होती हैं, मरीन टेक्नोलॉजी नई नई एकदम, वाटर स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. सो मिस आउट नहीं करने का है. और ये थर्ड एडिशन है कतर बोट शो का और इस बार का जो थीम है क्राफ्टिंग वंडरफुल. इट हाईलाइट्स द क्राफ्ट्समैनशिप एंड क्रिएटिविटी ऑफ मैरिटाइम एक्सलेंस. ऑल्सो द प्राइजेस आर सिंगल डे जनरल एडमिशन का टिकट इज 50 रियाल, 4 डे जनरल एडमिशन इज 160 रियाल. हॉस्पिटैलिटी टिकट अगर आपको चाहिए तो इट इज 450 रियाल पर डे. उसमें आपको यू नो वीआईपी और हॉस्पिटैलिटी लाउंज मिलेगा, वीआईपी रजिस्ट्रेशन एरिया मिलेगा एंड वीआईपी पार्किंग ऑल्सो. सो टाइमिंग्स विल बी 4th को 4 टू 9 पीएम, 5th और 6th को 4 टू 10 पीएम एंड 7th को 4 टू 9 पीएम. आप वहां पे लग्जरी यॉट्स और सुपर यॉट्स देख सकते हैं, बोट्स एंड मरीन वेसल्स आपको देखने मिलेंगी, लीडिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल मरीन ब्रांड्स वहां पे देखेंगे आप, मरीन इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वाटर स्पोर्ट्स डिस्प्ले, वाटरफ्रंट एक्सपीरियंसेस, फैमिली एक्टिविटीज, फूड लाइफस्टाइल एंड एंटरटेनमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल फ्रॉम ग्लोबल मरीन इंडस्ट्री. सो इफ यू आर अ मरीन एंथुजियास्ट, यू नो आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट कतार इज कि कोई भी चीज हो, यू नो वेदर इट्स स्पोर्ट्स और इट इज बोट शो, सब चीजों में फुल फैमिली के लिए पैकेज होता है आपके पास. वहाँ एक्टिविटीज जो होती है वो पूरी फैमिली को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है. सो दिस इज रियली कूल, कोई भी लेफ्ट आउट नहीं फील करेगा. सो लास्ट ईयर 2025 का जो एडिशन था उसमें 27,000 प्लस विजिटर्स आए थे, 505 ब्रांड्स थे एंड 65 प्लस यॉट्स एंड मरीन वेसल्स वर देयर. एंड दैट सेज कि भाई अलग लेवल पे पहुंच चुका है ऑलरेडी हमारा कतर बोट शो और इस बार और भी क्रेजी होगा. सो डू नॉट फॉरगेट, फटाफट से जाइए और अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरज तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: कृति सैनन लगी तो बहुत कमाल थी इस मूवी में. All these tracks are coming up your way in this hour. Sundari Radio Olive, Triyu Bindas.
1: Cool song.
0: Radio Olive par aane wala gana. Cool song of the hour.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं. स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है. शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए. The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर. ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार. ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026. द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: Tanisha.
1: Anuradha Sriram ki awaaz mein dupatta mera from the movie Mujhe Kuch Kehna Hai. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha hai aapke saath. Bindaas mornings chal rahe hain yahan par, and along with, you know, resting and sleeping a lot aur medicines khane ke saath saath ek cheez aur kari maine. पापा यार देख लिया. जी हाँ, जाकिर खान का स्पेशल जो है वो OTT पे आ चुका है. एंड ओ माय गॉड, नो वर्ड्स. उस इंसान की ऑब्जर्वेशन, जितने भी उनके स्पेशल्स हम देखते हैं उतनी बार हम ये चीज रिपीट करते हैं कि उस इंसान की ऑब्जर्वेशन कितनी कमाल है. मतलब एक एक चीज जो वो अपने पापा के बारे में बोल रहे थे ना, आज लाइक हाँ मेरे भी ऐसे ही है. मम्मी के बारे में हाँ मम्मी भी यही बोलती है. इतना रिलेटेबल, इतना फनी एंड इतना इमोशनल. ब्यूटी ऑफ जाकिर खान्स कंटेंट इज कि वो आपको हंसाता भी है और वो आपको रुलाता भी है. एंड राइट आफ्टर दैट इमीडिएटली आई कॉल्ड माय फादर एंड आई हैड द सेम काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन ही हैड विद हिज फादर. हाँ ठीक है, मम्मी यहाँ पे नहीं है, ठीक है थोड़ी देर में फोन करना. एग्जैक्टली यही था. I'm telling you. So yeah, if you haven't, do watch it. It is amazing. Maza aa jayega dekh ke. Sending an amazing track your way. Udit Narayan aur Alka Yagnik ki awaaz mein. Lakshya movie se agar main kahun mujhe tumse mohabbat hai, to kya kahoge batao? Sindhi Radio Olive, Triyu Bindas.

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bendaz. Jackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa, sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 to 3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस्तन निशा को बिंदास मॉर्निंग में.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio Ola 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning's children hai yahan par.
2: Wacky wisdom.
1: Mein aaj hum baat karte hain elevators ki. Lift, ji. Kabhi ye socha hai ki lift mein mirror kyun hota hai? Hamein trick karne ke liye. So 1950s में जो elevators थे उसमें कोई mirror नहीं था, ठीक है? But everybody used to complain कि भाई ये बहुत slow चलती है, इसको fix करो, इसको थोड़ा faster करो. तो engineers ने सोचा कि भाई इसको और faster करने में तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, it will be like really expensive, बहुत ज़्यादा cost लगेगी. So somebody came with this trick कि आईना लगा दो वहाँ. क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को देखना बहुत पसंद है. हमेशा से ही ये रहा है कि इंसान को जैसे ही आईना नज़र आता है वो खुद को देखने में बिजी हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ निकल गया. कभी अपने बाल फिक्स कर रहे होते हैं, कभी मेकअप, कभी शर्ट, कभी बैग, कुछ ना कुछ चल ही रहता है, नहीं तो सेल्फियाँ ले लेते हैं जी. सो दैट्स हाउ द टाइम पास फास्टर, लेकिन आपको पता नहीं चलता है उतना ही वक्त लग रहा था. एंड एक्चुअली मिरर लगने के बाद कंप्लेंट्स कम हो गई. एंड सेम वे व्हाट्सएप या फिर कोई भी वीडियो कॉल आप करते हैं, उस वीडियो कॉल पे भी आपको आपका फेस जो पहले नज़र आ रहा होता है वो इसीलिए आ रहा होता है क्योंकि आपको वेटिंग टाइम ज़्यादा ना लगे. बिकॉज यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ, यू आर फिक्सिंग योर सेल्फ कि भाई फ़ोन उठाने से पहले मैं अपने आप को फिक्स कर लेती हूँ. दैट्स द ट्रिक एंड दैट्स द thoughtful design behind having mirrors in the elevators. Sending an amazing track your way. Stay tuned and Jio Bindas.
0: Radio Olive Park.
3: Fresh. Ye gana fresh hai.
0: Fresh song of the hour.
3: Ye gana.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए

0: दस मॉर्निंग RJ Tanisha के साथ हर सुबह 6 से 10 only on Radio Olive 106.3 FM Jio Binda Bindas Morning
1: Malabar Golden Diamonds Bindas Morning
2: मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio All 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas mornings chal rahe hain abar.
2: Ye hai chalti phirti dictionary.
1: और जो आज का वर्ड मैं लेकर आई हूँ अपने डिक्शनरी से, वो हम हर रोज करते हैं जैसे ही हमारा शिफ्ट एंड होता है ऑफिस में, एकदम फटाफट से चुपचाप से निकल लेते हैं कि भाई मैनेजर को ना ही बताएं, काम ना थमा दे एंड मोमेंट में. सो द वर्ड इज एब्सक्वाचुलेट, ABSQUATULATE, विच बेसिकली मीन्स टू लीव सडनली, स्पेशली टू रन अवे और डिसअपियर एकदम से. I am a person जो parties में pressure की वजह से चली तो जाएगी, पर वहाँ से निकलने की बहुत जल्दी होती है मुझे, तो मैं चुपचाप से बिना बताए निकल लेती हूँ. So I basically absquatulate from the parties. Yes, the way we all absquatulate from the office as soon as our shift ends.

Chanchal Man at the random. Beautiful movie, beautiful track. का साउंडट्रैक भी बहुत सुंदर है यार. She will, she will. Stay tuned to Radio Olive. To you, Bindas.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: कुछ कुछ होता है ऐसे. साजन जी घर आए ओनली ऑन रेडियो 11.3 FM. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. बजाय सलमान खान के साथ बुरा तो होता है यार इस मूवी में. वेल टेक टॉक में आज बात करते हैं. मेटा की, जिन्होंने मेटा वन लॉन्च कर दिया है. सो बेसिकली मेटा वन क्या है, वो आपको आपके सारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर एंड फेसबुक, सबके लिए एक्स्ट्रा फीचर्स देगा इफ यू आर अ क्रिएटर और अ बिजनेस पर्सन, लाइक यू आर डूइंग योर बिजनेस थ्रू दीज सोशल मीडिया एप्स. और स्पेकुलेशंस ये भी है कि अभी तो ये फर्स्ट फेज आया है कि यू नो सिर्फ क्रिएटर्स और बिजनेसेस के लिए. हो सकता है ये इवेंचुअली ओवरऑल मेटा को एक्सेस करने के लिए भी, जितनी भी एप्लीकेशन है उसके लिए भी, नॉर्मल इंसान के लिए भी सब्सक्रिप्शन फी लगा दे. स्पेकुलेशन है, पक्का नहीं है कुछ भी, बट यू नेवर नो राइट. सो इसमें काफी सारी अपडेट्स है, जैसे कि यू नो क्लिकेबल लिंक्स मिल जाएंगी, पोस्ट पे डाल सकते हैं अब आप वो, इंस्टेड ऑफ यू नो आस्किंग पीपल टू गो टू योर लिंक इन द बायो और डीएम करो, या फिर यू नो पेड एड्स लगाने की जगह आप वहीं पर एड डाल सकते हैं एंड इट विल डायरेक्टली डायरेक्ट पीपल टू वेर एवर यू वॉन्ट देम टू गो. ठीक है, और उसके लिए यू हैव टू पे ऑब्वियसली मंथली कुछ प्राइस है. सो मेटा इज ब्रिंगिंग इन एजेंट्स जो कि आपके बिहाफ पे रिप्लाई कर सकते हैं कोई भी अगर बिजनेस क्वेरी आ रही है आपके लिए तो. और थर्ड बिग अपडेट इज दैट कंपेटिटर इनसाइट्स आपको मिलेंगी. यू विल गेट अ डैशबोर्ड इफ यू यू नो बाय दिस प्लान, तो आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, वहां पे आप कंपेटिटर इनसाइट्स देख सकते हैं जिसमें आप कंपेयर कर पाएंगे कि यू नो कौन सा ऊपर जा रहा है, किसके फॉलोअर्स बढ़े हैं, किसके कम हुए हैं, आपका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है इस मंथ में और कौन से क्रिएटर का बेहतर रहा है आपसे. बट ऑल इन ऑल पॉइंट यही है कि आपका कॉन्टेंट वर्दी होना चाहिए तो वो सही इंसान तक पहुंच जाएगा, वो लोगों को यू नो टच करना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, उन्हें फील होना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट तो काम का है वट एवर यू आर ट्राइंग टू सेल. अदरवाइज कोई फायदा नहीं है. आप कितना भी मेटा वन खरीद लो, मेटा टू खरीद लो, थ्री खरीद लो, डजेंट एग्जिस्ट, बट फायदा भी नहीं है. सो या बट आई वांट टू नो, अगर मेटा ने ऐसे नॉर्मल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए एक सब्सक्रिप्शन लगा दिया तो क्या आप खरीदोगे वो बताओ मुझे. 3311063 पर स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: Jackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio All Over 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो गया मेरे जाने का मेरी जान. मिलते हैं कल सुबह 6 बजे. अपना ख्याल रखिएगा एंड हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ. और क्योंकि ट्रांजिशन वाला वेदर चल रहा है तो आप इस कोल्ड की जगड़ में ना आ जाए प्लीज़. बहुत सारा यू नो पानी पीजिए, स्टे हाइड्रेटेड, फ्लूइड्स लीजिए, काफ़ी सारे लाइट खाना खाइए और ख्याल रखिए यार बस अपना, ठीक है. जो भी चीज़ें कर सकते हैं टू प्रिवेंट गेटिंग द कोल्ड कर लीजिए प्लीज़. और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें फॉलो करते रहिए. रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज द हैंडल. इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद अस 3311 1063 इज द नंबर. एंड आस्क द फार्मासिस्ट के लिए आप अपने सवाल भेज सकते हैं. अगर आपके पास कोई भी सवाल हो फार्मासिस्ट से पूछने के लिए तो वर्ल्ड फार्मेसी डे पर एक एक्सपर्ट फार्मासिस्ट आएंगे हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए. 3311 1063 पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं और सुधरे रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.

मैं कल ही ये बात कह रही थी ना आप लोगों से कि ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत को कोई फ्रिज में रखना भूल गया है, बिल्कुल किसी पुराने खाने की तरह जो है ख़राब चल रही है। या तो मेरा गला ख़राब रहता है, या तो जो है मेरी तबीयत ख़राब रहती है, या तो मेरा मूड ख़राब रहता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ ख़राब ज़रूर रहता है। हाँ जी, आपकी कशिश जो है वो लौट कर आ चुकी है 106.3 रेडियो ऑलिव पर, शो लाइफ मस्त है लेकर, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरी खुद की लाइफ जो है वो सॉर्ट नहीं हो पा रही है। हर दूसरे दिन या तो मेरा गला ख़राब हो जाता है, हर दूसरे दिन या तो मुझे बुखार आ जाता है, या कुछ हो जाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो चलते चलते पैर मुड़ जाता है। कैसे होगा ऐसा? और पता नहीं क्यों मैं इतना रोते हुए बोल रही हूँ, लेकिन आई किड यू नॉट, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, आई प्रॉमिस कि मैं हंसते हुए बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी ना आवाज़ ऐसी आ रही है कि मैं रो रही हूँ। सो कोई बात नहीं, इस आवाज़ को जो है आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। अब तो हर रोज़ का हो गया है, आपको तो इसी आवाज़ की आदत हो गई होगी। बाकी कोशिश करेंगे कि इस आवाज़ को ठीक कर ले। अगर आपके कोई नुस्खे हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर। बाकी हाय हेलो गुड मॉर्निंग कहकर मेरा ज़रा मनोबल बढ़ा दीजिए, मनोबल मतलब मेरा थोड़ा मोटिवेशन मुझे दे दीजिए आप। बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपकी रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जी ओपन दास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: बेचारी यार हमारे यहाँ की मम्मियाँ कितनी मासूम होती है, कितनी प्यारी होती है, उन्हें कुछ भी बताओ उन्हें ऐसा लगता है कि यार हमारे बच्चे की तो गलती ही नहीं है, ये मौसम ही गलत है। हाँ जी वेलकम 106.3 रेडियो वाले पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, मेरी लाइफ तो खुद जो है वो सॉर्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि गला खराब चल रहा है। एंड ये बात जब मैंने मम्मी को बताई ना कि मम्मी यार थोड़ा सा ना बुखार सा आ रहा है और थोड़ा सा गला खराब सा चल रहा है, मम्मी ने एक ही बात बोली कि हाँ हाँ वहाँ मौसम बदल रहा है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। उनको ये नहीं बता पाई मैं, इतने प्यार से उन्होंने ये बोला कि मम्मी मैंने जो है ठंडा ठंडा पानी पी लिया था मूंगफली के ऊपर। हाँ, आप लोगों को लगेगा कि यार क्या है कि पीनट्स खाने के बाद अगर किसी ने पानी पी लिया तो गला खराब हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे साथ हो जाता है, मेरी बॉडी थोड़ा अलग चलती है। सो आप जो है इस बदलते हुए मौसम में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाकी बात कर लेते हैं आज के मौसम के मामले की। सो मौसम का मामला कुछ ऐसा है कि आज जब मैंने ऐसे खिड़की का जो है पर्दा हटाया तो मुझे धूप थोड़ी सी कम लगी, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार चलो आज टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हैंडल करने लायक होगा। लेकिन फिर भी लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो 20 के अंडर नहीं है, मतलब 20s में नहीं आ रहा, 30s में ही आ रहा है। आज का टेम्परेचर जो है इस वक्त का अगर मैं बात करूं तो 35 डिग्री सेल्सियस है दोहा में, हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड लोएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वैसे ये वाला भी ठीक है, कल मुझे जो है ठंड लग रही थी तो 30 डिग्री पे जो है एसी करके सोई थी मैं, बताओ मतलब बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर मेरे रूम में हो रहा था। फिलहाल देखिए बहुत अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपकी रेडियो सेट पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Cool song. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Year।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो विद मजरती।
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

यार इसको ना मेडिकल टर्म में कुछ तो बोलते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में जो है वो समझाना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको जो है कुछ कुछ ऐसे सुनाई देता है, जैसे आपका फोन जैसे अगर बहुत रिंग करता है, बहुत बजता है, तो आपको अपने फोन की रिंगटोन जो है वो ऑफन ऐसे ही सुनाई देती है, फोन नहीं बज रहा होता है तो भी, और या तो किसी की आवाज़ जो है वो आपको आती है जो आपको बहुत ऑफनली बुलाता है। सो मेरे साथ जो है ये शुरुआती अभी कुछ दिनों में जो है शुरुआती इस महीने में हो रहा था वैसलीन के साथ। एक इन्फ्लुएंसर है जो वैसलीन करके जो है वीडियो बना रही थी, और ये मुझे आवाज़ मेरा फ़ोन रखा हुआ है साइड में तो भी आ रही थी। हाँ जी, आपकी कोशिश आ चुकी है लाइफ मस्त है शो लेकर आपके लिए, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं 106.3 रेडियो एलिफ पर। अब देखिए यार, अब ये वैसलीन वाला ट्रेंड जो है वो कम हुआ, तो अब कुच्चू पुच्चू तुम कहाँ हो वाली एक लड़की है जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल है, एंड उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, ठंडी ठंडी पवन चले, एंड वो अब मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं जब भी ये असली वाला गाना सुनती हूँ ना, तो मुझे उस लड़की की याद आ जाती है। बताइए यार, ये क्या कर रहा है इंस्टाग्राम हमारे दिमाग के साथ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। अब मुझे रैंडमली अगर कोई ठंडा पानी मांगता है ना, तो मेरे मन में ठंडी ठंडी पवन चले आ जाता है। अगर कोई बोलता है कि यार बाहर का मौसम जो है ठीक हो रहा है, बाहर हवा चल रही थी, तो ठंडी ठंडी पवन चले, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बताओ यार इसका क्या इलाज है। बाकी थोड़ी सी देर में आपको स्ट्रेस कम करने का जो एक तरीका है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। सो प्लीज़ ये रील देखने वाले तरीके जो है ये मत अपनाना। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
1: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा। रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
0: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

0: आप लोगों ने जब भी मैट देखी है उस जब भी मैट मूवी में जो है दिखाया है कि करीना कपूर किस तरीके से जो आदित्य का कैरेक्टर होता है यानी जो शाहिद कपूर का कैरेक्टर होता है उसको हेल्प करती है मूव ऑन करने में, ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने में, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जो है भूलने में, एंड ये जो है रियल लाइफ में भी काफी असरदार है। हाँ जी, आपकी कसरत लौट कर आ चुकी है लाइफ मस्त शो आपके लिए लेकर, जहां पर हम जो है आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं 106.3 रेडियो वाले पर। अब जिस तरीके से करीना कपूर ने जब वी मेट में गीत के कैरेक्टर ने बेसिकली आदित्य के कैरेक्टर को जो है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मूव ऑन करवाया था, उसे भूलने के लिए एक आइडिया दिया था, वही आइडिया हमारी रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। तो उसने क्या किया था कि उसकी फोटो जो वो वॉलेट में लेकर घूम रहा था उसको जो है जलाकर फ्लश करने को उसे कह दिया, इसके बाद उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। तो ये जो है आप रियल लाइफ में भी कर सकते हो। अगर आपको किसी बात का बहुत स्ट्रेस हो रहा है या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप अपने सारे थॉट्स एक पेपर में लिख सकते हैं एंड उसके बाद उन्हें ऐसे क्रम्बल करके बस डस्टबिन में डाल दीजिए या फिर फ्लश कर दीजिए, बस आपका जो है थोड़ा स्ट्रेस देखिए थोड़े टाइम के लिए तो फ्लश आउट हो ही जाएगा। एक बार ज़रूर से ट्राई करना। बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपकी रेडियो सेट्स पर, गाने सुनकर भी ना स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। मैं हूँ आपकी कशिश, ज़रा गर्म पानी पीकर आती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखो और स्टे ट्यून्ड, कहते रहो जियो बिंदास।
1: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Yeah, Ghana, fresh. Fresh song of the hour. Yeah, Ghana.

0: देखो यार, ये डायलॉग भले ही किसी और के लिए बोला गया है, लेकिन मैं सलमान भाई के लिए बोलना चाहती हूँ कि कब बॉलीवुड एक तरफ और सलमान भाई दूसरी तरफ। मैं बताती हूँ क्यों कह रही हूँ ऐसा। हाँ जी, आपकी कशिश जो है वो लौट कर आ चुकी है लाइफ मस्त शो आपके लिए लेकर, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ। एंड गर्म पानी पीने के बाद मुझे भी थोड़ा बेटर लग रहा है, तो मेरी लाइफ भी बेटर हो ही गई होगी। वैसे देखिए, मैं सलमान भाई को जो है सबसे अलग इसलिए बोल रही हूँ, सबसे जुदा इसलिए बोल रही हूँ, बिकॉज कटरीना को जो है इतना ट्रोल किया जा रहा था उनके यू नो आफ्टर प्रेगनेंसी वेट गेन को लेकर एंड उनकी अपीरियंस को लेकर। उसके बाद जो है बिग बॉस के स्टेज पर सलमान खान ने स्टैंड लिया है कैटरीना का, एंड जितने भी ट्रोल्स हैं उनका मुंह बंद कर दिया है कि भाई उस इंसान की तरह तुम सक्सेस दिखाओ, उस इंसान की तरह बिजनेस बना के दिखाओ, मूवीज करके देखो, एक टोटली नई जगह पर जहाँ पे आपको लैंग्वेज भी नहीं पता उस जगह पर आपने अपना नाम बनाया है, ये तुम एक बार करके देखो और उसके बाद जो है वो बात करना। कैटरीना अगर चाहे तो देखो यार, मेडिकेशंस लेकर जो है फटाफट वापस बैक इन शेप आ सकती है, लेकिन फिर भी शी चोज टू रिकवर नेचुरली एंड हमें इस बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है 3311063 पर आके मुझे बता सकते हो। बाकी सलमान भाई, आपने मेरा दिल जीत लिया। बीइंग अ शाहरुख खान फैन, मैं ये कह रही हूँ कि आई लव यू द मोस्ट। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जी उपिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: जिन भी लोगों की सैटरडे को छुट्टी होती है, आज का दिन उनके लिए कितना हैवी लग रहा होगा ना. उनको लग रहा होगा कि यार आज फिर काम शुरू करना है. एंड बाकी जिन लोगों का सैटरडे को ऑफिस होता है उनके लिए एक वार्म अप हो जाता है सैटरडे को. सो संडे से लाइफ आसान हो जाती है. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखिए यार, ऑफिस तो जाना मैंडेट है. मतलब मैं जो है यही सोच रही थी कि यार स्कूल में जब भी थोड़ा भी ऐसा सर दुखता था, पेट दुखता था, गला खराब होता था, तो मम्मी से जो है सिंपली बोल देते कि मम्मी नहीं जाना यार. और फिर मम्मी जो है थोड़ा सा मनाती थी पर फिर मान जाती थी. लेकिन यहाँ पे मम्मी जो है वो आपकी मैनेजर नहीं है ना. मैनेजर कभी नहीं मानता. मैनेजर जो है वो बोलता है कि नहीं नहीं आना तो पड़ेगा, आओ अपना काम करके चले जाओ. एंड अगर आप नहीं आए तो फिर आपको जो है सुनना पड़ेगा अगले दिन. ठीक है, फेयर, ऑब्वियसली आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एंड आप जो है स्कूल को पे कर रहे होते हो पढ़ाने के लिए, और आप नहीं जाओगे तो आपका लॉस है. वैसे ही कंपनी जो है वो आपको पे कर रही है काम करने के लिए, तो आप नहीं जाओगे तो उनका लॉस है ना. तो इसी वजह से जाना तो देखो पड़ता ही है. तो मैं अडल्टिंग की बात कर रही थी. खैर बात ये नहीं थी कि छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है, बट बात अडल्टिंग की ये हो रही थी कि यार आप छुट्टी अपने मन से कभी भी नहीं ले सकते ना. सो इसी बात पर जो है मैं यही कह रही थी कि अगर आपको ऑफिस में ही फन हो जाए, फॉलिक हो जाए, मस्ती हो जाए, मज़ा आ जाए तो कितना अच्छा हो ना. सो बस वही जो है मस्ती मज़ा फन लेकर जो है हम आपके ऑफिस आ सकते हैं, आपकी वर्क स्पेस पे आ सकते हैं. आपको बस जो है अपने आप को रजिस्टर करना है. सो हैप्पीनेस लाउंज जो है रेडियो ऑलिव की टीम आपके ऑफिस में ला सकती है. HL लिखकर आपको बस हमारे व्हाट्सएप पे भेजना है 3311063 पर. सो अगर आप कोई बिजनेस ओनर है, मैनेजर है, HR है, सो जल्दी से रेडियो ऑलिव की टीम को, रेडियो ऑलिव के RJs को अपने ऑफिस में बुला लीजिए. हम बहुत अमेजिंग गेम्स आपको खिलाएंगे, आपको पूरा रीएनर्जाइज एंड रिजुविनेट कर देंगे. 3311063 इज नंबर. जल्दी से मैसेज कर दो HL लिखकर, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी. फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर. जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना. फ्रेश है
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर.

उसमें होते हैं ना जिनसे एक अलग सी वाइब आ जाती है, पता चल जाता है कि हाँ यार ये तो थोड़ा ना इस वाइब का लग रहा है। जैसे मुझसे आपको अच्छी अच्छी वाइब आती होगी, नहीं आती तो यार आपको गलतफहमी हो रही है, मेरे से अच्छी वाइब आनी चाहिए। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह को जो है सेकेंड डॉटर जो है वो हुई है, एंड यार कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो हमारे तरफ से उनको। एंड देयर समथिंग अबाउट रणवीर सिंह दैट स्क्रीम्स गर्ल डैड, उस उनकी एनर्जी ही ऐसी है कि भाई लगता है कि हाँ भाई आप जो है लड़की के पापा परफेक्टली बनेंगे, बिकॉज वो केयर वो दीपिका पादुकोण को देते थे। फैशन की अगर मैं बात करूँ सो वो एंड केयर, मतलब थोड़ा सा अगर मैं कंपैरिजन ड्रॉ करूँ ना, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कुछ गलत है, लेकिन रणबीर कपूर थोड़े से मुझे कम गर्ल डैड लगते हैं, लेकिन रणवीर सिंह पूरी तरीके से गर्ल डैड एनर्जी में रहते हैं एंड लगते हैं बेसिकली। सो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें ये जान के कि दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह एंड दुआ सिंह पादुकोण की फैमिली में जो है एक नया मेंबर आ चुका है, एंड बस अब इनके नाम की स्पेकुलेशन जो है वो इंस्टाग्राम पे शुरू हो जाएंगे। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। आप स्टे ट्यून्ड रहिए 106.3 रेडियो ऑल इफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश जियो बिंदास।

0: भाई साहब, सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इस वक्त। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने कपड़े तो हमने ले लिए हैं, इनको पेयर कैसे किया जाए, इसलिए ये एक नया ऐप यूज कर रहे हैं। हाँ जी, आपकी कसूस यहाँ लौट कर आ चुकी है लाइफ मस्त शो लेकर आपके लिए, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ 106.3 रेडियो आरएफ पर। अब देखिए यार, लाइफ मस्त तो तब बन जाएगी जब हमेशा अलमारी खोलूं और कपड़े मेरे ऊपर गिर रहे हैं। अलमारी डिसऑर्गेनाइज होने की वजह से नहीं, लेकिन कपड़े बहुत हैं इस वजह से। अब मैं जब इंडिया में थी तो मेरा जो रूम था वो पूरी एक बड़ी सी अलमारी थी, एंड मैं उसमें थोड़ी सी जगह ऐसे बनाकर साइड में बेड लगाकर सो जाया करती थी और मुझे बहुत मजा आ रहा था। अब यहाँ पर इतना बड़ा रूम है लेकिन एक सूटकेस में मेरे कपड़े हैं और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। जब तक ऐसे ना हो जाए कि मैं क्या पहनूँ, ये पहन लूँ वो पहन लूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मुझे अभी ये होता है कि यार ये तो कल भी पहना था, आज भी पहनना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ अभी मेरे कपड़े उतने जमा नहीं करे हैं। एंड ऑब्वियसली आप अपने घर से ऐसे फ्लाइट में ज़्यादा वेट तो ला नहीं सकते ना, सो ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है। लेकिन जिन लोगों के पास बहुत कपड़े हैं, मतलब जैसे मैं इंडिया में थी, हमें काफ़ी बार दिक्कत आती है कि यार क्या पहने आज, और फिर हम जो है रिपीट कर लेते हैं आउटफिट की, यार कुछ समझ नहीं आ रहा यही पहन लेते। कपड़े बहुत सारे हैं लेकिन उनको स्टाइल करना नहीं आ रहा। सो अब जो है एक ऐसा ऐप आ चुका है, एक नहीं रादर बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं, जिसमें आप अपने सारे कपड़ों की फ़ोटो खींचो एंड उसमें फीड कर दो, एंड उसके बाद अपना मूड जो है वो हर रोज़ बताओ कि आज ये जो है इवेंट है या ये मेरा मूड है, उसके हिसाब से वो आपको आउटफिट आपकी ही अलमारी से, वार्डरोब से निकाल के दे देगा। वाओ, मतलब बड़ी दीदियों वाले काम, मम्मियों वाले काम जो है अब एआई करके देंगे हमें। वेरी नाइस। वैसे देखो इससे टाइम काफ़ी बचेगा एंड काफ़ी नए तरीके जो है वो मिलेंगे, लेकिन देखो जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कौन जो है एक हेड स्कार्फ को बेल्ट की तरह पहनेगा और कौन सा एआई ये बता पाएगा? मैंने किया है, ठीक है। मेरी मम्मी ने मुझे जो है एक नॉर्मल पापा की टी शर्ट को ब्लाउज बना के दिया है। सो, देखो साड़ी पहननी है, अब वो एआई तो समझ नहीं पाएगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो तो बोलेगा जाओ मार्केट जाकर एक ब्लाउज ले आओ, लेकिन मम्मी की क्रिएटिविटी अलग लेवल की होती है। सो एआई की जो है भले ही कितनी भी ज़्यादा वाहवाही हो जाए, लेकिन मम्मी की जगह वो नहीं ले पाएगा। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: बात है सर, क्या पर ये बात है।

बैक इन इंडिया क्या होता था ना, मेरे पापा के एक फेवरेट फार्मासिस्ट थे एंड उन अंकल से जो है हमारी हर हेल्थ प्रॉब्लम डिस्कस होती थी एंड वो इतने नॉलेजेबल थे, इतने जो है उन्होंने इतना काम कर रखा था, इतने एक्सपीरियंस थे कि उनके पास हर चीज़ का जवाब भी होता था। लेकिन कतर में अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो मैं हूँ ना। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, आपको मौका मिल रहा है आस्क द फार्मासिस्ट का। हाँ जी, आप अपने दिल के जितने भी सवाल है जो फार्मासिस्ट से आप पूछना चाहते हैं लेकिन आप नहीं पूछ पाए, वो आप आज पूछ सकते हैं। सो आपको बस मैसेज करना है अपना सवाल 3311063 पर। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका नाम ना बताएं तो आपका नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे। 3311063 इज द नंबर। आप अपना क्वेश्चन जो है वो हमारे साथ जो है शेयर कर सकते हैं। केयर एंड क्योर के एक एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए। सो 3311063 पर फार्मेसी रिलेटेड आपके जितनी भी सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड नंबर तो सेम ही है, अभी तक चार बार बता चुकी हूँ लेकिन आपके लिए एक और बार बता देती हूँ, 3311063। सो जल्दी से मैसेज कर दो अपने सवाल एंड बाकी स्टे ट्यून्ड रहो 106.3 रेडियो ऑलिव पर।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको जो है सुबह ठीक नहीं लग रहा है, फिर आप ऑफिस आए और आपको अच्छा लगने लग गया, लेकिन फिर जो है वापस वैसा ही लगने लग गया? मेरे साथ वैसा ही हुआ। शो की शुरुआत में मैं जो है काफ़ी लो थी, लेकिन आप लोगों से बातचीत करने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। अब जो है वापस ऐसा लग रहा है कि एनर्जी लो जा रही है, तो मैं जाती हूँ, कुछ खावा के आती हूँ। आप जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखो, वक्त हो गया मेरे यहाँ से जाने का। सो कल जो है 10 बजे लाइफ मस्त है मैं वापस मुलाकात होगी, एंड लाइफ मस्त बनाने की मैं कोशिश करूँगी। बाकी जाते जाते वही कहूँगी जो हर रोज़ कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, एंड बस अपनों का ख्याल रखना, मुझे याद करते रहना। रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल को आगे फॉलो कर लो, एंड व्हाट्सएप पे भी आप अपने दिल की बातें हमसे शेयर कर सकते हो। 3311063 नंबर। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Shackman की power packed range, heavy trucks, tippers, trailers और boom trucks, दमदार performance और भरोसा, सिर्फ Carmel के साथ। Visit Carmel Group now.
1: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक।
2: अरमान मलिक।
3: मैं number one.
1: 106.3 FM, Radio Olive, Geo Bindas.
0: Olive सुनो Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
3: Radio Olive, I'm number one.
0: Olive Music Marathon. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

आप सभी का स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे चलिए एक साथ बैठकर शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना कि लास्ट टाइम जेन्युइनली आपके लाइफ में जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिले हैं, या फिर जो भी गिफ्ट्स मिले हैं, या फिर जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, उसके लिए थैंक यू कब बोला था। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी कुछ बुरा होता है लाइफ में, हम बोलते हैं कि यार ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये चल रहा है। मगर जब सब अच्छा चलता है तब हम नहीं बोलते कि यार मेरे साथ ना अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो उन ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू बोलना, ग्रेटफुल फील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मगर हम कभी कभी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। तो जरा मुझे बताइए, लास्ट टाइम कब आपने दिल खोल के एक थैंक यू बोला था अपने लाइफ में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए। आप मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर, और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: नमस्कार वणकम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
1: जैकी श्रॉफ
2: रेडियो 106.3
0: जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं बात करने वाला हूं द बिगेस्ट लाई एवर टोल्ड। अब इसमें मैं संसार में बताए गए सबसे बड़े झूठ के बारे में बात नहीं करूंगा, ये उस झूठ के बारे में बात करूंगा जो कभी कभी हम अपने आप से करते हैं, कभी कभी हम अपने आप को बोलते हैं। जब भी हम ठीक नहीं होते, अच्छा नहीं महसूस करते, कोई ना कोई दिक्कत रहती है या फिर कोई ना कोई मलाल मन में रहता है, तो हम बोलते हैं कि सब ठीक है। वो सबसे बड़ा झूठ है हमारे लिए। और कई बार हमने सुना होगा कि यार देखो, दुनिया में अगर किसी से झूठ बोल रहे हो, ठीक है बोलना तो नहीं चाहिए मगर फिर भी ठीक है, मगर कभी खुद से झूठ मत बोला करो करके। क्योंकि जब हम अपने आप से झूठ बोलते हैं तो हम अपनी नज़रों में भी गिर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं और वो एक हर्ट जो होता है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। इसलिए अपने आप से सच बोलना, अपने आप से एक सच्चा रिश्ता रखना जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और काफी इंटरेस्टिंग एक वीडियो मैंने देखा, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। उस वीडियो में क्या बताया गया था, तो बेसिकली उस वीडियो में बोला था कि अपने लाइफ को वापस ट्रैक में लाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। क्या है वो दो चीजें? एक है पेन, दूसरा है एक नोटबुक या फिर एक डायरी। बेसिकली एक पेन और एक नोटबुक को लेके आप अपने लाइफ को वापस ट्रैक में ला सकते हैं। कैसे? मैनुअली लिख के, फिजिकली लिखने का काम करके। हर दिन मुझे क्या क्या करना है वो लिखना, अपने फीलिंग्स को लिख के एक्सप्रेस करना। कुछ भी चीज़ हो, आपके दिन में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कुछ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, जिसके भी चीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हो उसे लिखिए। जब हम लिखते हैं तो एक चीज़ होती है ब्रेन डंपिंग करके, हमारे जो भी जज्बात अंदर चल रहे होते हैं उसको हम डंप कर देते हैं पेपर के ऊपर। दूसरी बात यह है कि जब हम एक प्रॉपर फिजिकल टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसे कंप्लीट करते वक्त जो एक हाई हमें फील होता है वो अलग लेवल का होता है। तो इसलिए कभी कभी बहुत ही बेसिक चीजें हमारे लाइफ में बहुत बढ़िया चेंजेस लेकर आ सकती हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
1: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा। रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
0: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।
2: लगा और हो जा रिचार्ज।
3: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। देखिए, फार्मासिस्ट डे आने वाला है और आपके मन में एक फार्मासिस्ट को पूछने के लिए कोई भी सवाल अगर है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। ये सवाल जो है हम पूछेंगे फार्मासिस्ट से और उनके जवाब आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप हमें सवाल जो है मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले, अभी के अभी। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर कीजिए हैप्पीनेस लाउंज के लिए। मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर HL Space अपने कंपनी का नाम, क्योंकि हैप्पीनेस लाउंज में हम आपके वर्क प्लेस को विजिट करते हैं, फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करते हैं, और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: स्पीकर फट जाए।
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज, प्रोफाउंड चीज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। कई बार हमने ये चीज़ सुनी होगी कि जितना हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जितना डेस्परेटली हम चीज़ों को अपने हिसाब से लेके आने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो बिखर जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डेस्परेशन जो है ना, हमेशा बनी हुई बात को बिगाड़ देता है। अननेसेसरी एक्साइटमेंट, अननेसेसरी डेस्परेशन जो है, अच्छी अच्छी चीज़ों को बिगाड़ सकता है। काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन बात यह है कि जो हमें करना है वो हम करेंगे, जो हमें मिलना है वो हमें मिलेगा। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात में से एक ये भी है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ नहीं है। जो है कंट्रोल में उसे कंट्रोल कीजिए, जो नहीं है उसे छोड़ दीजिए। और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: is brought to you by
1: Malabar Golden Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Golden Diamonds Safari Mall में.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। एक चीज मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, वो यही है कि यार लाइफ में कभी कभी बहुत बड़ी चीज मिलने के बाद भी ना खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, वो छोटी छोटी चीज़ों में है, बेसिक चीज़ों में है, जो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही मंडेन चीज़ है, मगर उसी में सच बताऊं तो एक बहुत ही बढ़िया खुशी छुपी हुई है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं, चैन से बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के चल पाना कहीं पे, अपने क्लोज्ड लोगों के साथ, अपने खास लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा वक्त स्पेंड कर पाना, खुल के हंस पाना, अच्छे से खाना खा पाना, टेस्ट को फील कर पाना, अपने आसपास के अच्छाई को महसूस कर पाना, काइंड होना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, मगर इसी में लाइफ की बड़ी बड़ी खुशियां छुपी हुई हैं। और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Olive Recharge.
0: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Radio.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एप्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं। ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ।
2: Falcon Fitness massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon

0: ਯੋਗਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੋ
1: ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਖੁਸ਼ਬੂ
0: आपके सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? एकदम वीकेंड जो है वो गुजर गया, संडे आ चुका है, संडे खत्म हो चुका है एक्चुअली, जब तक मेरे शो का टाइम होता है तब तक चीजें जो है वो ओवर हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एंटरटेनमेंट जो है वो चालू होगा। 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ। और आपका आज का दिन जो था वो कैसा रहा? 3311063 पर यार सुबह 4 बजे के अराउंड अब आपने फील किया कि ठंड सी लगने लगी है, आप एसी जो है वो आपका बंद कर देते हो कि यार। और दूसरा क्या होता था कि सुबह जब मैं रेडी होती थी हमेशा एसी ऑन रहता था, लेकिन अब जब सुबह उठती हूँ रेडी होते टाइम नहा धो के जब आप आते हो तो एसी बंद रहता है। मौसम जो है वो थोड़ा सा बदलना स्टार्ट हो गया है, तुम भी बदल जाओ यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास। आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ। 3311103

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ

0: रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
1: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
0: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

नहीं सिमरन, अबे सिमरन यार जाओ यार, मैं नहीं बात कर रही। पर ये हो ही नहीं सकता कि मैं बात ना करूं यार, मैं खुद ही बोर हो जाऊंगी अगर मैं नहीं बात करूंगी। स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबके मैसेज

0: दिल का चैन जो है वो आपका तब चला जाता है यार। आप ना चाहे घर पे किसी भी चीज को, किसी भी जानवर को जब पेट करते हो तो आपकी फैमिली की तरह हो जाता है। आपने देखा होगा कि सर्कुलेट हो रही है एक न्यूज जिसमें एक जो कतरी फैमिली है उनकी बिल्ली जो है जिसका नाम उन्होंने रेक्स रखा है वो खो गई है और 12-13 साल की है। वो ऑरेंज कलर की मेल कैट है। सो उनका फोटो भी अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी इसको ढूंढ के लेके आएगा तो इसको 100,000 रियाल जो है वो रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप जरूर चेक कर सकते हैं। सो अगर आप में से कोई भी इसको देखे, इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जरूर चेक कर लीजिएगा, तो प्लीज जो है वो आप इनको जो है वो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नंबर भी कैट ओनर ने दिया हुआ है अपना, तो वहां पे कॉल कर सकते हैं आप। ये 21 मार्च से जो है वो मिसिंग है। सो आई नो यार कैसा फील होता है जब आपके घर पे, जब आप कोई पेट करते हो तो इस तरह से वो खो जाए तो यार सच्ची में अलग हो जाती है दुनिया। और जो लोग यू नो पेट ओनर है उन्हीं को ये चीज जो है वो समझती है। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं। ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ।
1: Falcon Fitness Massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness, ab fitness pakki hai.
2: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai, malai maar ke. To bhaiya banaiye apni evening ko zabardast. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: बहन जी, दिल की बात हो रही है फिर। तो पूछ ही लेते हैं दिल में,
1: दिल में क्या है, धड़कन में क्या है,
0: खुशबू। अरे इससे याद आया सलमान खान, सलमान खान से याद आया बिग बॉस और कल का एपिसोड। मैं कहती सुनियो की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। आजकल तो मैं भाई साहब बिग बॉस देख रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। सो कल जो है अच्छी खासी क्लास जो है वो सलमान खान ने लगाई और उन्होंने बताया कि ये लोग जो है बॉडी शेम करते हैं, है ना, एज शेम करते हैं। ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जो है वो बोला जाता है। सो उन्होंने अच्छा खासा जो है वो इसके ऊपर लेक्चर दिया, भाषण दिया और इसके बारे में वो भी बात की, क्योंकि रिसेंटली अभी कैटरीना कैफ काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने गेन कर लिया और उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। एंड बहुत सारी बातें की जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बातें लगी कि यार यू नो इन सारे इश्यूज को एड्रेस करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अलग बात है कि लोग तो अपनी मर्जी करेंगे, लेकिन फिर भी जो चीजें गलत है वो गलत है, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर भी ये चीजें जो है वो होती है, बॉडी शेम किया जाता है, एज शेम किया जाता है। तो ये ऑल ओवर हर जगह जो है वो चल रहा है, लोगों को ये करने में मजा आता है, लेकिन ये सही नहीं है यार। थोड़ी देर में प्रेयर का टाइम हो रहा है, वरना मैं और बात करती इसके बारे में। सुनते रहिए रेडियो ऑल इन कोर के जरिए जियो बिंदास।

0: भी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। लेकिन मेरे मस्त मस्त दो नैन देखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चश्मे के अंदर देखना पड़ेगा यार। 5:51 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। थोड़ी सी हवाएं
1: ले जाए जाने का,
0: जहाँ पे भी आपको हवाएं लेके जाए, लेकिन सिमरन की आवाज जो है वो उन हवाओं में गूंजनी चाहिए और सिमरन की आवाज सुनती रहनी चाहिए आपको, क्योंकि 9 बजे तक अपना शो चलता है यार। अभी फिलहाल क्या होता था कि पहले 15 सेकंड का गाना जो था वो चलता था आपकी स्टेटस पर, स्टोरी पर। मैं बात कर रही हूँ व्हाट्सएप की। मेरे को एक्चुअली ये बात 2 दिन पहले ही पता लगी। अगर आपको पहले पता लगी थी तो इट्स ओके, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अभी जो व्हाट्सएप पे अगर आप स्टोरी लगाते हो तो आप उसमें चूज कर सकते हो कि आपको म्यूजिक जो है वो 15 सेकंड का रखना है या फिर आपको 30 सेकंड का रखना है। अभी ड्यूरेशन 30 सेकंड।

स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd September तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

0: दिखाती हूँ यार मैं।
1: आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना।
0: अभी धीरे धीरे मौसम भी हमारा दिल चुरा रहा है।
1: मौसम आपके सुनो,
0: मौसम के हाल कुछ इस तरह से, 35 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 36 डिग्री सेल्सियस। आज का लोएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो होने वाला है। ह्यूमिडिटी 30% है। मजेदार माहौल है, नहीं ह्यूमिडिटी सॉरी 60% है और विंड जो है 13 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। सो या ये है मौसम के हाल। अगर आप अपने दिल का हाल बताना चाहते हो तो ऑलवेज नंबर वही है 3311063।

0: मेरी फीड जो है वो इंस्टाग्राम की किस चीज से भरी पड़ी है, जो चीज वायरल है वो है फातिमा। फातिमा की रील्स इतनी ज्यादा वायरल हो रखी है क्योंकि उनके बोलने का स्टाइल इतना ज्यादा है कि वो कभी लाइफ में खुशी नहीं होती, और अगर उनसे कोई पूछे तो वो बड़े रूखे जवाब देती हैं, और किस तरह से जवाब देते जरा सुनिए।
1: फातिमा कैसी हो?
2: ठीक हूं।
1: क्या कर रही हो?
2: कुछ भी नहीं, फ्री।
1: अच्छा फातिमा, आपकी फेवरेट चीज क्या है?
2: कोई भी है।
1: मतलब खाने में?
2: खाने में ही है।
1: क्या चीज़ है?
2: पिज्जा। कोई भी?
1: कोई भी पिज्जा? फ्लेवर कोई भी?
2: पिज्जा या कोई भी, मैं सारी चीजें खा लेती हूँ।
1: अच्छा फातिमा, आप खुश कब होती हो?
2: मैं हो जाती हूँ।
1: बहुत ज्यादा हैप्पी कब होती हो?
2: हो जाती हूँ कभी कभी।
1: किस बात पे?
2: हो जाती हूँ सारी बातों पे।
1: अच्छा अच्छा,
2: वो तो सारी हो जाते हैं।
1: अच्छा फातिमा, अगर आपको घूमने जाना हो तो आप कहाँ जाओगी?
2: चली जाऊंगी मरी।
1: मरी जाओगी?
2: हाँ ठीक है, चली।
0: तो इस तरीके से फातिमा जो है वो रिप्लाई करते हैं, और बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं और बोल रहे हैं कि भाई मतलब हम, हमारी जिंदगी जो है फातिमा जैसी हो गई है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, और कोई बात करे तो फातिमा जैसे रिप्लाई आते हैं।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू
2: अरे रानी का तो पता नहीं पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं यस दोहा गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा
4: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा रेट्रो वाइब्स प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स जी बुक करें धरोहर मिस मत करना
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ
7: Zabardast evening. Make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: बता दूं
1: मैं लिखूं तो आ जाए मैं बैठ लिखूं तो आ बैठे
0: भाई साहब इस गाने से ना मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है यार 6:34:55 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है लेकिन अगर आपको सोना पसंद है तो जापान चले जाओ टोक्यो जापान में एक कॉम्पिटिशन है स्लीपिंग टूर्नामेंट जो है वो हो रहा है 5 अक्टूबर को और जीतने वाले को कुल मिला के $14,000 जो है वो मिलने वाले हैं सो या इसमें 90 मिनट का रेस होगा जिसमें 20 पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं सो या फिर आप जो है वो सोने वाले बीच बीच में ये जो लोग हैं वो आपको डिस्टर्ब भी करेंगे तो वो किस तरीके से वो जज करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है कि मतलब कौन डीप स्लीप में सो सकता है उनके अपने अपने तरीके हैं इस चीज़ को जज करने के लेकिन भाई साहब ये बढ़िया है लोगों के लिए ये ड्रीम कॉम्पिटिशन होगा जिनको सोना बहुत ज़्यादा पसंद है यार इसे पिछले जब से मैं छुट्टी से आई हूँ बहुत सोए जा रही हूँ यार मैं मतलब मेरे को जब भी फ्री टाइम मिल रहा है मैं सो रही हूँ बस

0: एक नंबर गाने चल रहे हैं। यो वेलकम यार, ऐसा तो होता ही है। सिमरन कौर का शो चल रहा है। जेंजी लिंगो में एक वर्ड जो है यूज किया जाता है बंस, BUNS। तो बंस का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज बैड या टेरेबल होती है, लो क्वालिटी की होती है, तो उसके लिए आप बंस जो है वो यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, माई वाईफाई टूडे बंस टेरेबल। सो या 6:53 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी पे। सिमरन कौर आपके साथ है, जियो इंदाज है।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour ye ga

0: बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं। ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ।
1: Falcon Fitness massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness, ab fitness pakki hai.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Shackman की power packed range, heavy trucks, tippers, trailers और boom trucks. दमदार performance और भरोसा सिर्फ Carmel के साथ. Visit Carmel Group now.
1: Hi guys, this is Jonita Gandhi.
2: Jonita Gandhi.
3: Radio Olive, I'm number one.
1: You are listening to me on Radio Olive.
2: Radio Olive.
1: Gio Binda.
3: Radio Olive, I'm number one.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: दीवाने हुए यार. बादशाह फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हैं. गाने की शूटिंग चल रही थी ना हम तो दीवाने हुए यार, तो ट्विंकल खन्ना साड़ी पहन के बारिश में डांस कर रही थी और बहुत जोर से गिर जाती हैं और फिर चिक्कड़ पंजाबी चिक्कड़ कहने कीचड़ में जो है वो पूरी लतपत हो जाती हैं. सो यार इस फिल्म से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगी. मैं कहती सोनियो की दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल. सो शाहरुख खान को बादशाह फिल्म से ही टैग मिला था बादशाह का. एंड उसके साथ साथ बादशाह अगर सिंगर की बात कर रहे हैं तो वो इसी इसी फिल्म के टाइटल से ही इंस्पायर हुए थे क्योंकि उनका नाम वैसे आदित्य प्रतीक सिंह है. तो इसी टाइटल से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना जो सिंगिंग करियर वाला जो नाम है बादशाह जो था वो रखा था. जब इस फिल्म का ओपनिंग सीन जो है वो चल रहा था ना, तो समहाउ जब ओपनिंग सीन हुआ शाम हुई तो जो जॉनी लीवर थे ना उनके चेहरे पे वो जो एक स्माइल होती है वो नहीं थी. अब्बास मस्तान डायरेक्टर थे इस फिल्म के, उन्होंने शूटिंग खत्म होने के बाद सब कुछ होने के बाद बोला कि आज वो बात नहीं है तेरे में, क्या बात है. तो तब जाके जॉनी लीवर ने बताया कि आज उनके डैड का एक मेजर ऑपरेशन था जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सैड थे. तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को पहले बता था, हम इसको थोड़ा दूसरे टाइम स्केड्यूल कर देते. तो उन्होंने बोला नहीं, काम काम है, मेरा काम जो है वो अफेक्ट जो है वो इस बात के लिए नहीं होना चाहिए. सो यार वाह यार है ना. काजोल को इस फिल्म के लिए अभी पहले साइन किया गया था, फिर समहाउ डेट्स मैच नहीं कर रही थी. बट ये फिल्म 2 साल डिले हुई जिसकी वजह से शिल्पा शेट्टी ने इस फिल्म को करने से जो था वो मना कर दिया. सो या ये फिल्म से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है. वापस लौट के रियलिटी चेक लेके आती हूँ. बहुत ही प्यारा गाना है यार जी गोविंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

ओए होए होए आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ये कहीं पे सिखाया नहीं जाता। ये जिंदगी में आपको अपने आप से जो है वो चीज आता है। आपके साथ कोई बुरा कर गया, कोई सिचुएशन आपके साथ बुरी हो गई है ना, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब आप किसी दौर से गुजर रहे होते हैं और सामने वाला आपको बहुत बोल देता है आराम से कि यार लेट गो करो, लेट गो करो। देखो यार, उस टाइम पे जो इंसान जिस सिचुएशन से गुजर रहा होता है, उसके साथ बुरा हो गया या कोई बुरा कर गया या सिचुएशन बुरी हो गई है ना, तो वो इंसान को वो चीज उस टाइम पे समझ नहीं लगती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आप इस टाइम पे किसी ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो जहां पर लेट गो करना बहुत ज्यादा आपको मुश्किल लग रहा है, मैं आपको इतना बोलूंगी कि यस, लेट गो करना मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज हो नहीं पाएगी, मुश्किल बहुत ज्यादा होती है लेकिन ये चीज हो जाती है टाइम के साथ। और मुझे लगता है कि इंसान लेट गो ना तब कर पाता है जब उसको उस सिचुएशन में कोई ऑप्शन नजर नहीं आती है। जब उसको कोई ऑप्शन नजर नहीं आती है उस सिचुएशन में, तो फिर वो लेट गो की तरफ जो है वो बढ़ जाता है। कुछ दिन जो है वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, फिर सेट हो जाती है यार चीजें। फिर आपको है कि भाई लेट गो तो करना ही पड़ेगा। खुश रहो यार लाइफ में, खुश रखो। नहीं खुश रह रहे हो तो लेट गो करो। वापस लॉर्ड के नेम गेम खेल रही हूँ, तैयार हो जाओ।

0: देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd September तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 7:49 ਸਟੂਡੀਓ ਖੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਗ ਭਾਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਪਾਈਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੂੰ ਯਾਰ। टाइम हो जाएगा कि आप लोगों के नाम लिए जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं ले लूं, तो फिर आप एक काम करो, अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम जो है वो आप लिख के भेज दीजिए। चलिए क्विकली अब मैं आप लोगों के नाम पढ़ने स्टार्ट कर दी। यूसुफ खान जी, शाहबाज जी, इमाद जी, आसमा जी, उमर जी, फारा चांद जी, शम्स जी, स्टैनली जी, गुलाम जी, इमाद ऑलरेडी मैं आपका नाम ले चुकी हूँ, जेनिफर जी थैंक यू सो मच, मुजीब जी, महबूब जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कामरान जी थैंक यू सो मच, आदित्य जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के भेजो क्विकली 3311063 पर। हमजा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सौजन्या जी थैंक यू सो मच, खिजर हयात खान जी थैंक यू सो मच, मोहम्मद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अशफाक जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना दोस्त शुरू होने वाला है। नाहिद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, निरूपा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, निशा जी थैंक यू सो मच, तीरथ प्रसाद जी, सूरज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू हो रहा है दोस्त। हाय हेलो करना बंद करो, नाम भेजो 3311063 पर। कामरान जी थैंक यू सो मच, रेखा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड कुलदीप जी थैंक यू सो मच, मुजीब जी थैंक यू सो मच, विनायक जी थैंक यू सो मच, रजनी जी थैंक यू सो मच, अबरार जी थैंक यू सो मच, जस्सा जी थैंक यू सो मच, जुल्फी जी थैंक यू सो मच, संधू साहब जी थैंक यू सो मच, शशिकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, एंड इदरीस जी थैंक यू सो मच, फिरोज जी थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के नाम ले लिया बेटा आप थैंक यू बोल दो और अपना फेवरेट वाला इमोजी भेज दो। अगले घंटे के लिए तैयार हो जाओ, अगले घंटे एक चुटकी सॉन्ग खेलने वाले हैं।

0: आते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: बड़ा प्यारा गाना है यार, है ना? सिमरन कौर आपके साथ। तो बहुत दिन हो गए यार जब से छुट्टी पे गई हूँ, तो वापस आके मैंने वो खेला ही नहीं आप लोगों के साथ, एक चुटकी सॉन्ग। सो एक चुटकी सॉन्ग में क्या होता है जिनको नहीं पता है, मैं बता देती हूँ कि मैं आपको एक चुटकी पर सॉन्ग सुनाती हूँ, एक छोटा सा म्यूजिक सा सुनाती हूँ उसका, गाने का एक छोटा सा। सो आपको गेस करना होता है कि गाना कौन सा है। तो लीजिए फिर मैं आपको एक चुटकी पर सॉन्ग सुना रही हूँ। हारे हारे हाँ, आपको जवाब जो है वो देना है इसी तरीके से गा के। प्लीज लिखिएगा मत, आपको वॉइस नोट भेजना है एकदम एनर्जी के साथ। सिमरन कौर का शो सुन रहे हो तो सिमरन कौर वाली एनर्जी होनी चाहिए। हे सिमरन, अपना नाम बताओ और गाना गा के भेजना, आपकी मर्जी है। बता के भेजना है तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन वॉइस नोट के थ्रू भेजिए 3311063 पर। एक बार वापस से सुना रही हूँ, रिकॉर्डर ऑन कर लो, हो गया ऑन, चलो फिर लो सुनो।
1: क्या बात है ये बात है।

अगर आपको पंजाबी पता है तो आपको ये गाना भी पता होगा। एक नंबर है यार। अर्श बैनीपाल दी आवाज दे विच 3 2 1 एंड गो।

0: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
1: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai, malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
5: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: गाना है यार ये और हम खेल रहे हैं एक चुटकी सॉन्ग जिसमें मैंने आपको एक चुटकी सॉन्ग सुनाया था नारे, नारे, नारे, नारे, नारे। बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है और बहुत इजी है
1: यार। सिमरन गुड इवनिंग।
0: मेरी गुड इवनिंग।
1: सॉन्ग यू प्लेड इज माया मैना याद आवे फ्रॉम मूवी जर्सी शाहिद कपूर।
0: बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गाना यही है, लेकिन आप जो मैसेजेस में लिख के भेजते हो वो मैं आप बाकी लोगों को कैसे सुनाऊं, कैसे समझाऊं कि आप लोगों ने मैसेज भेजे हैं। सो बेटर रहेगा कि आप नेक्स्ट टाइम जो है वो वॉइस नोट भेजिए ताकि बाकी लोगों को भी सुना पाऊं और मैं भी सुन पाऊं।
2: संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को।
0: नहीं संभालो, सुनते रहो रेडियो ओलिव और कहते रहो जी गोविंदास। बहुत ही प्यारा, बहुत ही रोमांटिक गाना यार। जब बात रोमांटिक गानों की होती है तो ये गाना भी उसमें से एक है। काफी अंडररेटेड है बट ट्रस्ट मी, सुनो इसको। फिल्म का नाम तो मुन्ना माइकल है जो कि मैंने नहीं देखी है दोस्तों, बट ये गाना बहुत सुना है। 2-1

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Nanadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif, Alkhol.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

मैंने कहा जी ठीक हूँ। सुन के अक्सर इंसान जो है वो ठीक नहीं रहता है यार। 8:00 ऑलमोस्ट 50 मिनट जो है स्टूडियो की घड़ी पे होने वाले हैं। सिमरन कौर आपके साथ है। जाने से पहले शो के आखिरी

सांसें जो है वो बराबर चलती रहनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, और कल शाम को 5 बजे जबरदस्त इवनिंग्स में फिर से होती है आपसे मुलाकात। स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है, किसी भी चीज का। खाने पीने रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे दे बड़े वाले स्माइल रखो, किसी का दिल मत दिखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए

Good evening. You are listening Radio All at 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Aur show ka naam hai, yes, of course, Midnight Lounge. September mein ek kitab aayi, jisme Deepak Ramola ki At the Speed of Flowers bahut hi khubsurat idea bhi lekar aayi hai. Dheemi hokar cheezon ko notice karna. और आजकल तो हम धीमा होना भूल ही गए हैं. हमारी जिंदगी में स्लो शब्द लगभग फेलियर जैसा हो गया है. जल्दी उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी आगे बढ़ो. लेकिन फूलों को देखो, वो जल्दी करने की कोशिश ही नहीं करते. वो अपनी स्पीड से खिलता है. और शायद इंसान की जिंदगी में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें फोर्स करने से वो जल्दी नहीं होती. करियर, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, सबकी अपनी टाइमिंग्स हैं. और आज मुझे ऐसा लगता है कि संडे की शाम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. आज कुछ ऐसा देखते हैं जिसे नॉर्मली आप बस क्रॉस करके निकल जाते हो. कोई पेड़, आसमान, चांद, घर की बालकनी या चाय का पहला सिप. कभी कभी लाइफ में नया कुछ पाने के लिए बस पुरानी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है. एंड आई रियली लव दिस कॉन्सेप्ट. और ये किताब जिसका नाम है द स्पीड ऑफ फ्लावर्स आपको यही सिखाती है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू. शो का नाम है मिडनाइट लाउंज.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

हम ना एक्टर्स को उनकी फिल्मों से जानते हैं, लेकिन कभी कभी एक एक्टर की स्क्रीन टाइमिंग और स्क्रीन इमेज इतनी मजबूत होती है कि हम उसे किसी और तरह इमेजिन ही नहीं कर पाते। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। अमिताभ बच्चन को ना एंग्री यंग मैन से अलग सोचने में टाइम लगा, शाहरुख खान को रोमांटिक हीरो के बिना इमेज मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल हो रहा था, और कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो बार बार अपनी इमेज तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ऑडियंस भी हमेशा वही वर्जन चाहती है जिसे वो पहले से पहचानती है। यही शायद फेम की सबसे अजीब कीमत है। आप दुनिया को अपना नया वर्जन दिखाना चाहते हो, लेकिन दुनिया कहती है हमें तो आपका पुराना वर्जन ही पसंद था। सो बॉलीवुड वाला एक सवाल पूछती हूँ आपसे, अगर आपकी जिंदगी पर फिल्म बने तो क्या आप चाहोगे कि आपके आपको जो रोल मिल रहा है जिसके लिए लोग आपको जानते हैं वो रोल मिले, या बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर? आई फील कि समटाइम्स आपको एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, पर कभी कभी ना ऑडियंस वो एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। यू टेल मी, क्या आपको अच्छा लगता है कि कोई एक्टर अलग अलग तरह के रोल्स करे, या फिर एक ही तरह के कैरेक्टर्स आपको किसी एक पर्टिकुलर हीरो पर अच्छे लगते हैं? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: ये है मिडनाइट लाउंज.

बारे में वो सारे सच। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि हीरो कौन है, विलन कौन है, लेकिन कुछ सबसे अच्छी कहानियों में विलन कोई इंसान होता ही नहीं है। कहीं टाइम विलन है, कहीं अकेलापन, कहीं लालच, तो कभी कभी इंसान का अपना खुद का डर। और यही चीज किताबों को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि असली कॉन्फ्लिक्ट हमेशा किसी दूसरे इंसान से नहीं होता। कभी कहानी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है मैं ये कर ही नहीं सकता, जब आप ऐसा सोचते हो। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल एट 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। और शायद रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, हम कई बार ना किसी दूसरे इंसान को अपनी प्रॉब्लम समझते रहते हैं, जबकि असली लड़ाई तो हमारी खुद की है, डर से, हेजिटेशन से या अजम्पशन से। सो आज इवनिंग में अब इतनी खूबसूरत से मौसम के साथ आई विल से कि एक फन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपकी जिंदगी एक किताब होती तो उसका विलन कौन होता? कोई इंसान नहीं, बस एक चीज, कोई डर, कोई ओवर थिंकिंग, प्रोकेस्टिनेशंस या फिर कुछ और। एंड आई विल से कि अगर इसमें से कुछ है तो मुझे जरूर मैसेज करके बताइएगा। नंबर इज सेम, 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, ये है मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज।

0: ये है मिडनाइट लाउंज
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

किसी फिल्म में हीरो और हीरोइन तो याद रहते हैं, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि कभी कभी हमें वो आदमी ज्यादा याद रहता है जो सिर्फ दो सीन में आया था, कोई फनी नेबर, कोई चाय वाला, वो दोस्त जो हर मुश्किल टाइम में एक लाइन बोलकर चला जाता है, या वो कैरेक्टर जिसने हीरो की जिंदगी में बस 5 मिनट बिताए हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। यू नो समटाइम्स ऐसा होता है कि फिल्म के मेन कैरेक्टर से ज्यादा आपको साइड कैरेक्टर याद रखते हैं, मतलब आपको लगता है कि यार वो तो बहुत ही मजेदार कैरेक्टर था। सिनेमा हमें एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाती है, हर कैरेक्टर को पूरी कहानी नहीं मिलती, लेकिन हर कैरेक्टर कहानी का मूड बदल सकता है। असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ लोग हमारे साथ सालों रहते हैं और कुछ सिर्फ कुछ महीनों के लिए आते हैं, लेकिन दोनों का असर बराबर नहीं हो तो कम भी नहीं होता। सोचिए आपकी जिंदगी में कौन ऐसा इंसान है जिसका रोल छोटा था लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल था, मतलब बहुत बड़ा प्ले किया उसने। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और ये है मिडनाइट लाउंज।

अब थोड़ा सा ना फन करते हैं। हर किताब मूवी नहीं बन सकती। कुछ किताबें पढ़ते हुए आपको लगता होगा कि इसका विजुअल तो शानदार होगा, और कुछ किताबों में आप ये सोचते होगे कि नहीं भाई, इसे पढ़ना ही अच्छा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। लेकिन कास्टिंग का खेल ना बहुत ही मजेदार होगा। मान लीजिए आपकी फेवरेट किताब पर आज एक बॉलीवुड फिल्म बन रही है, आप हो उसके डायरेक्टर। आपको बस तीन चीजें चुननी है, हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी और विलन कौन होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी विलन कोई इंसान नहीं होता, वो कोई लोनलीनेस हो सकती है, कोई टाइम हो सकता है, या खुद इंसान का अपना कोई फियर हो सकता है। सो आज रात अपनी फेवरेट बुक उठाइए और इमेजिन कीजिए अगर बॉलीवुड इसे बनाए तो कास्टिंग किसकी होगी। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। यूजुअली आई टॉक अबाउट बुक्स, बॉलीवुड, फैशन, ट्रिवियाज, और इन सब के बीच में आपके जो मैसेजेस आते हैं ना, उन्हें पढ़कर मुझे बहुत मजा आता है। सो यहाँ पर मैंने आपसे सवाल पूछ लिया,

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM.

देखिए, टाइम के साथ ना सब कुछ बहुत आसान और बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया है। आजकल म्यूजिक भी इतना अवेलेबल है कि हम एक दिन में शायद इतने गाने सुन लेते हैं जितने पहले पूरी कैसेट में होते थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, हम अक्सर गाना नहीं याद रखते, हम उससे जुड़ी कुछ यादें याद रखते हैं। एक गाना कॉलेज की कैंटीन याद आ जाती है, कोई गाना सुना पहली नौकरी का कम्यूट याद आ जाता है, कोई गाना सुनते ही किसी दोस्त की कार याद आ जाती है, या कोई गाना सुनते ही रात की बालकनी याद आ जाती है, और कभी कभी कोई गाना इतना अचानक किसी मेमोरी से जुड़ जाता है कि सालों बाद सुनते ही दिमाग कहता है कि हाँ ये वही साल था। म्यूजिक ना शायद हमारी मेमोरी का कोई अनऑफिशियल आर्काइव है। सो आने वाला गाना जो है वो उसे सुनिए और लिरिक्स पर ध्यान मत दीजिए, बस देखिए कि वो गाना आपको कहाँ पर लेकर जाता है, कौन सी याद में और कौन से टाइम में। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

इंडिया के एक सिटी में जहाँ पर बुक फेस्टिवल चल रहा था, इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ सोशल मीडिया रील्स और बदलती रीडिंग हैबिट्स के बीच। यंग लोगों को बुक्स की तरफ वापस लाने की बात हुई। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज़ मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। लेकिन सवाल ये नहीं है कि रील्स अच्छी हैं या बुक्स अच्छी हैं, सवाल कुछ और है। सवाल है हमारा दिमाग अब कितनी देर तक के लिए किसी एक चीज के साथ बैठ सकता है। रील्स आपको 20 सेकंड में नया सब्जेक्ट दे देती हैं। बुक्स आपसे कहती हैं बैठो, पहले 10 पेजेस पढ़ो फिर बात करते हैं। और शायद यही डिफरेंस है कि एक आपको लगातार नया देती है और दूसरी आपको किसी एक चीज के अंदर ना मतलब बहुत टाइम देने के लिए बात करती है। मतलब किताबों में और रील्स में यही डिफरेंस है। सो आज रात एक्सपेरिमेंट कीजिए कि 15 मिनट फोन साइड में रखिए और कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर 15 मिनट बहुत लंबे लगे तो शायद किताब बोरिंग नहीं है, हमारी आदतें बहुत तेज हो गई हैं। हमें ना हर मिनट कुछ नया देखने की आदत पड़ गई है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

संडे की शाम की ना एक अजीब सी क्वालिटी होती है। वीकेंड खत्म हो चुका होता है कल रात को ही, और आज हमने अपना नया वीक जो है वो स्टार्ट कर लिया होता, और उसके बाद इतने सारे मेल्स, बीच में एक छोटा सा खाली स्पेस, और शायद जिंदगी में ऐसे स्पेसेस की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। हर खाली मिनट को भरना बिल्कुल जरूरी नहीं है, हर साइलेंस में कुछ हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, हर ब्रेक में फोन जरूरी बिल्कुल नहीं है। कभी कभी बस बैठना भी एक एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि जब लगातार कुछ ना कुछ चल रहा होता है तभी हमें पता चलता है कि हम खुद क्या सोच रहे हैं। सो आज रात कल की प्लानिंग थोड़ी बात कीजिएगा, पहले 5 मिनट बस चुप बैठिए, देखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इस वक्त जिंदगी में सबसे ज्यादा शोर किस चीज का है, और हो सकता है जब आप किसी मोटिवेशनल कोट में नहीं हो बस उस 5 मिनट की शांति में मिल जाए। सो इसी के साथ आई हैव टू से कि आई नो आज का दिन बहुत हेक्टिक था, बहुत सारे काम थे, बहुत सारे मेल्स थे, बहुत सारे टारगेट्स थे, बट स्टिल वो तो हर दिन का है ना, सो परेशान क्यों होना। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, फॉर नाउ आई हैव टू से बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए सुपर हिट गाने सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑल पर। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Mornings and night.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Olive 106.3 FM, Gio Bendaz.